लाले बरसोमा लिख डगे दीदा बढ़ाए बरसोमा लिख डगे दीदा बढ़ाए बरसोमा लिख मरे दीदा बढ़ाए बरसोमा लिख मरे दीदा बढ़ाए बरसोमा ले ला ले ला लाले साकुमाचा बर बर हिने कोलाई साकुमा